0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਔਰ 6:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਨੋਜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की

0: यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Navindra Chandra Ram Gulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing

लोक गीता। नौ बजे लिख रहा कि विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिस तहत तुम नौ बजे सुनोगे प्रोग्राम चित्र लोक और 9:30 के प्रोग्राम आज के फनकार। 10 बजे आकाशवाणी एफ एम बठिंडा तहत तुम आनंद माणो के प्रोग्राम गीत पिटारा का, तुम आनंद माणो के गैर फिल्मी पंजाबी गीतों का। 11 बजे रिलीज करांगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दी दिल्ली केंद्र तों। 11:05 ते तुसीं आनंद माणोगे एफ एम रेनबो दिल्ली दे प्रसारणां दा। बारह बजे रिलीज करांगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन और 12:05 ते अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दी दिल्ली केंद्र तों। 12:10 ते आकाशवाणी एफ एम बठिंडा फिर तुहाडे नाल रहेगा प्रोग्राम लैट्स रॉक एंड डांस लैके। प्रोग्राम दा संचालन करनगे दीपा छाबड़ा। 12:30 ते समा रहेगा साड़ियां भैणां दे प्रोग्राम घर परिवार दा। सिलसिला रहेगा साडा साथी हफ्तावारी सेहत संभाल, विशा रहेगा जी अमन इज्जत सुरक्षा हर एक दा हक, अते विश्व दे मुद्दा मौकियां दा मानसिक सेहत ते की असर है। सो इस बारे गलबात करने साडे नाल होणगे डाक्टर तरुणप्रीत कौर। 1:10 ले करांगे प्रदेशी खबरां आकाशवाणी जलंधर केंद्र तों। एक बज के 15 मिनट आकाशवाणी एफ एम बठिंडा तहत रहेगा प्रोग्राम हैलो फरमाइश, सिलसिला रहेगा साडा हफ्तावारी जायका। 2 बजे ले करांगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन, 2:15 हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली केंद्र तों। बाद दोपहर 2:30 आकाशवाणी एफ एम बठिंडा फिर तुहाडे वेड़े विच रहेगा प्रोग्राम सुरीली दोपहर लैके। 3 बजे रिलीज करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण, जिस तहत असीं 3 बजे सुणोगे प्रोग्राम सखी सहेली ते 4 बजे प्रोग्राम सेहतनामा। 5 बजे आकाशवाणी एफ एम बठिंडा तहत रहेगा प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत, सिलसिला रहेगा अपना विरसा अपना सभ्याचार, विशा रहेगा जी एक पंजाबी गायक गीतकार शायर अते कवि देबी मखसूसपुरी भाग। दूसरा आवाज ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन गुरदीप गिल। 5:30 आकाशवाणी एफ एम बठिंडा तहत रहेगा प्रोग्राम गल्लां चो गल। प्रोग्राम का संचालन करनगे लवलीन सचदेवा। 6:20 रिलीज करांगे प्रदेशी खबरां आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तों। छे बज के 3 मिनट से समा रहेगा साडे युवा साथियों के प्रोग्राम युववाणी का। 7 बजे सिनंद माणो के प्रोग्राम शाम सुहाणी का। 7:30 रिले करांगे पंजाबी विच खबर आकाशवाणी के जंदर केंद्र तों। 7:40 साथियों प्रोग्राम शाम सुहाणी उसी तरह जारी रहेगा। 8 बजे रिले करांगे साडा एक विशेष संपोसर प्रोग्राम उमंग बाय NCERT भाग 1316। 8:30 आकाशवाणी एफ एम बठिंडा तहत सिनंद माणो के प्रोग्राम पंच पाणियां दे गीत दा, जो कि दर्थ होएगा तुहाडे खतां ते ते वट्सएप सुनेहां ते। 8:45 ते रिलीज करांगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन समाचार संध्या। 9 बजे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली केंद्र तों। 9:15 ते रिलीज करांगे विविध भारती दे प्रसारण, जिस तहत तुसीं 9:15 ते सुणोगे प्रोग्राम आपके लिए। 9:30 ते प्रोग्राम छाया गे, 10 बजे प्रोग्राम आज के फनकार और 10:30 ते साथी प्रोग्राम रहेगा ढलती जाए रात और 11 बजे साड़ी सभा की समाप्ति होगी। यह था सन साडे अज प्रसारित अते रिले किए जाने वाले प्रोग्रामों का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां तुसीं ट्यून किया होया है आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 101.1 MHz ते। त्या हुण सरवण करदे हां प्रोग्राम अमृत वेला।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: सुनते भगती रचना जसपाल सिंह की आवाज़ दे विच।

आहिस्ता चल ए जिंदगी, आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं। हाय फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आज फिर तो हाजिर है जी, तुहाडा रेडियो दोस्त आरजे पवन लेके प्रोग्राम सजरी सवेर। बिल्कुल साथियों, फिर तो एक नवा दिन, नवी सवेर, और फिर तो इस जिंदगी नू जीन लई नवे हौसले ते नवीआं उम्मीदां। सो जी, मैनूं उम्मीद है कि हुण तक तां साडे सारे ही जिहड़े यार दोस्त मित्र ने ऐतवार दी छुट्टी तों बाद, उस छुट्टी दे मोड़ तों बाद बाहर आ गए होणगे, और अज दे वर्किंग डे यानी कि कम कार वाले दिन दी शुरुआत उन्होंने कर दित्ती होणी है। बिल्कुल साथियों, कुछ तां साडे वीर सवेर दी सैर दा आनंद लै रहे होणगे, कुछ साडे दोस्त सवेर दी चाह दी चुस्की दा, और कई मेरे दोस्त हुण वी सोच रहे होणगे कि यार उठिए कि ना उठिए।

0: 1968 तो चल रही नैक तो दूजी वार ए ग्रेड अते यूजीसी तो ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा हासिल करने वाली शहर दी एक लौती नामवर संस्था एसएसटी गर्ल्स कॉलेज बठिंडा विच चल रहे कोर्सेज बीए बीकॉम बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल सीएसएम बीसीए बीबीए बीलिब पीजीडीसीए पीजीडी इन योगा पीजीडी इन बैंकिंग अते इंश्योरेंस पीजीडी इन वेब डिजाइन एमए इंग्लिश हिंदी अते पंजाबी एमकॉम एमएससी मैथ्स एमएससी आईटी एमबीए एमसीए एमएससी फैशन डिजाइनिंग अति 4 साला बीए बीएड आईटेप विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला होस्टल कंपटीशन सेल एनईपी अनुसार 3 अति 4 साला यूजी प्रोग्राम्स हर वर्ग ले स्कॉलरशिप स्कीम्स वधेरी जानकारी ले एसएसटी गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171 9194 95 175 57 848 98 720 65 150।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा दे सारे श्रोतियों नूं दस दईए कि मिती 30 जून दिन मंगलवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सर्जरी सवेर दे तहत तुसी सुन सकोगे सिलसिला हड बीतियां जग बीतियां। कहानी रहेगी सांझी कंध ते कहानीकार संतोख सिंह तीर। वाचक अते संपादन कमल सिद्धू। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। सो सुनना ना भूलना मिती 30 जून दिन मंगलवार सवेरे 7 बजे सिलसिला हड बीतियां जग बीतियां।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।

मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साडी टेक्निकल टीम दा, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो साथियों, इस गीत दे नाल ही अपने रेडियो दोस्त आजे पवनी दो आग्या ते मैं उम्मीद करदा, दुआ ही मंगदा हूं सब तो, कि तुसी साथियों हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो ते एंजॉय करदे रहो जी आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत

0: रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक

0: का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
2: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
3: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद।

0: नवभारत टाइम्स की खबर है, देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मॉनसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मॉनसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honor. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgulam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and a commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 46वीं आजादी के 50 साल समारोह में मुख्य मेहमान वजो शामिल हुए ने। श्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम नाल मुलाकात भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सम्मान समारोह में बहादुरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अज नवी दिल्ली में संपूर्ण बाल सेहत प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अमरीका ते ईरान जवाबी हमले रोकण अते कतर की राजधानी दोहा विच गलबात मुड़ शुरू करन लई सहमत हो गए ने। भारतीय पुरुष हाकी टीम ने लंडन विच FIH प्रो लीग के मैच विच पेनल्टी शूटआउट राही इंग्लैंड नूं 3-2 नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने से आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य मेहमान वजो शिरकत की। वह यह सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत की जमीनी ते समुद्री फौज दी टुकड़ियां ने भी रस्मी परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारतीय समुद्री फौज के जंगी जहाज INS तरकश और INS इक्षिक राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जो भारत और सेशल्स विचकार मजबूत दोस्ती को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के लोगों को आजादी दिवस की शुभकामनाएं दीं। वह राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के सदे से शनिचरवार को सेशल्स पहुंचे सन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी समारोह में मौजूद सन। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर खेत्र में भारत के विजन महासागर में एक महत्वपूर्ण भाईवाल है और यह दौरा दोहां देशों विचकार सहयोग को नवी गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाल सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्होंने वातावरण सुरक्षा, निरंतर विकास और समुद्री अर्थव्यवस्था को उत्साहित करने में उनके योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया। सम्मान प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल सरकार के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने यह सम्मान जलवायु तब्दीली की चुनौती का सामना कर रहे सारे देशों से चुगिरदे की रक्षा लिए काम करने वाले समर्पित किया। उन्होंने कहा कि चुगिरदे की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों प्रति साड़ी जिम्मेवारी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी

0: साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इन टू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: श्री मोदी ने कल सेशल्स विच मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम नाल मुलाकात भी की थी। दोहां नेतावां ने भारत ते मॉरिशस विचकार चल रहे सहयोग की समीक्षा की थी ते भारत ते विशेष आर्थिक पैकेज अधीन प्रोजेक्टां दी प्रगति का जायजा लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास ते प्रगति नूं विशेष अहमियत दिंदा है। उन्होंने कहा कि दोहां देशां विचकार सांझे प्रोजेक्ट मॉरिशस विच सेहत संपर्क निरंतर विकास ते समुद्री अर्थव्यवस्था नूं उत्साहित करनगे। वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बरतानिया के अपने दौरे तो बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच गए ने। उन्होंने नाल एक उच्च पद्धरी भारतीय व्यापारक वफद भी गया है। इस फेरी का उद्देश दोहां देशों विचकार व्यापार निवेश ते आर्थिक संबंधा नूं मजबूत करना है। भारतीय वफद एथेंस विच स्टार्टअप्स नाल संबंधित कई समागमों विच हिस्सा लेगा। भारत ते ग्रीस के व्यापारक आगुआं नाल भी मीटिंगां कीतियां जाणगियां जिस विच बुनियादी ढांचे डिजिटल तकनोलॉजी रक्षा भोजन ते खेतीबाड़ी वर्गे खेतरां विच सहयोग वधाउण ते चर्चा कीती जाएगी। वफद ग्रीस दीआं कई प्रमुख कंपनियां दा भी दौरा करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सन्मान समारोह विच बहादुरी पुरस्कार प्रदान करनगे। इस मौके ते राष्ट्रपति हथियारबंद सेनावां केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलां राज ते केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बलां दे कर्मचारियों नूं बहादुरी पुरस्कार प्रदान करनगे। इह पुरस्कार उन्हां सैनिकां नूं दित्ते जांदे ने जो असाधारण बहादुरी दा प्रदर्शन करदे ने। इह सन्मान दहशतगर्दी बगावत अते सरहदी इलाकिआं विच चुनौतियां विरुद्ध देश दी निरंतर लड़ाई नूं वी दर्शाउंदे ने। यह हवाबाजी समुद्री कार्यां अते मानवतावादी मिशन विच दिखाएगी बेमिसाल बहादुरी नूं भी मानता दिंदे ने। इस तों पहलां राष्ट्रपति ने इस महीने की 8 तरीक नूं राष्ट्रपति भवन विखे सन्मान समारोह के पहले पड़ाव विच बहादुरी पुरस्कार प्रदान कीते सन। यह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अज नवी दिल्ली विच संपूर्ण बाल सेहत प्रोग्राम की शुरुआत करनगे। यह प्रोग्राम केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई कौंसल की 16वीं मीटिंग विच शुरू किया जाएगा। सेहत मंत्रालय अनुसार यह प्रोग्राम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल दी सोच ते आधारित है। इसका उद्देश्य जन्म तो लैके 3 साल की उम्र के बच्चों लिए घर के नेड़े बेहतर सेहत संभाल सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रोग्राम तहत नवजम्मे बच्चों ते छोटे बच्चों लिए मौजूदा घर घर जाके देखभाल प्रोग्रामां नूं जोड़िया जाएगा। इस विच बच्चों का शुरुआती विकास मावां की मानसिक सेहत जांच ते डिजिटल निगरानी भी शामिल होगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सारे मंत्री विधायक ते पंजाब विधानसभा दे स्पीकर हाज श्री अकाल तख्त साहब विखे पेश होके सिख कौम दी सर्वोच्च धार्मिक संस्था के बेअदबी विरोधी कानून बारे सूबा सरकार दा पक्ष पेश करनगे।
2: मैनूं तां बुलाया नहीं गया जी। सरकार दा पक्ष जिहड़ा ओह एमएलए साहब आन ते कैबिनेट मिनिस्टर रख के आउणगे, स्पीकर साहब भी जाणगे नाल, ते जो भी उन्हां वल्लों कोई सुझाव होऊगा जां कुछ एसजीपीसी वल्लों जां अकाल तख्त साहब वल्लों ओह उहते विचार वटांदरा करांगे।
1: यह गल अकाल तख्त साहब वालों पंजाब के मंत्रियों ते विधायकों नूं तलब करके स्पष्टीकरण मंगण तों बाद आई है कि सिख धार्मिक मामलों नाल संबंधित कानून जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार सुध बिल 2026 नूं अकाल तख्त नाल सलाह मशवरे कीते बिना किवें पास किया गया है। अमृतसर विच एक प्रेस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन्हां संबंधी फर्जी वीडियो दे वेरवे भी सौंपेगी। एक सवाल दे जवाब विच मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार जल्दी ही जथेदार नूं इह दसेगी कि किवें उन्हां दा अक्स खराब करन लई एक फर्जी वीडियो दी वरतों कीती गई।
2: असीं जिहड़ी वीडियो दे मास्क वाला वीडियो सीगा उहनूं इक लैटर समेत ओह वीडियो जिहड़ी अकाल तख्त साहिब भेजांगे कि इस तरह मास्क बन जांदे ने ते मास्क ला के इक नकली ते फर्जी वीडियो जिहड़ी बनाई गई है इक अपना लिखती रूप दे विच पक्ष असीं अकाल तख्त साहिब नूं भेजांगे।
1: अमरीका ते ईरान जवाबी फौजी कार्रवाई रोकण ते दोहा च गलबात मुड़ शुरू करने लई सहमत हो गए ने। गलबात दा उद्देश होरमुज़ जल मार्ग बारे विवाद नूं हल करना है। दोहां देशां विचकार पिछले कुछ दिनां विच फौजी कार्रवाई तेज़ हो गई सी। अमरीका ने ईरान उपर जंगबंदी की उलंघना करन दा इल्जाम लाया ते उस ते फौजी टिकाणिआं ते हमले कीते। जवाब विच ईरान ने बहरीन अते कुवैत विच अमरीकी फौजी टिकाणिआं ते बैलिस्टिक मिजाइल अते ड्रोन हमले कीते ने। दोवें देश होरमूज़ राही जहाजों की आवाजाई नूं आम वांग बनाउण लई

जी नमस्कार श्रोतियो, मैं वीरपाल कौर सिद्धू लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम महक पंजाब दी। इस प्रोग्राम तहत सुनांगे सिलसिला लोक गीत। आओ सुनने हैं पहला गीत रसिया नींबू, गायिका सुरेंद्र कौर, गीतकार जिहड़े हैगे संगीतकार हैगे केसर सिंह नरूला जी। इस गीत दे विच मुटियार अपने प्रेमी पति जां माही दे नखरिआं अते प्यार दा इजहार करदी है। ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਰਸੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਟਾਸ, ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨੋਕਝੋਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब सुनते हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल का गाया हुआ पीकू फिल्म का ये गाना।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाजों में हंसी तो फंसी फिल्म का ये गाना आप सुनना सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजहर फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का लिखा गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह का गाया हुआ। कौसर मुनीर के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और लीजिए आप सुनिए लैला मजनू फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल का लिखा गीत, जिसे संगीत से संवारा है नीलाद्री कुमार ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं। इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं, एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

मुझे गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पर जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनकरेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया, फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे, उनके जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले इन्होंने गाया है, आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

special lover, lover. Teri aankhon ka jadoo.

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर ये समय है बॉलीवुड ट्रेल्स का, यानी बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें, ढेर सारी अपडेट्स इसी समय होती हैं, इस घंटे होती हैं, और साथ में होते हैं आपके मनपसंद एकदम नए नए ताजा तरीन बेहतरीन गाने भी उन्हीं अपडेट्स के साथ। तो आपके लिए एक सवाल भी तो है, और भी तो बहुत कुछ है जो आपको इस शो को बिल्कुल छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा, मजबूर कर देगा ऐसा नहीं बोल सकती, मजबूर नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आपके लिए एक सवाल होता है और उस सवाल का जवाब देना है अगर, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होता है, और सवाल पूछा जाएगा लगभग 11:30 बजे। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी समझनी जरूरी है, क्योंकि आप बॉलीवुड से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं बबीता त्रिपाठी के साथ भी। तो आप जुड़े रहिए इस शो बॉलीवुड ट्रेल्स में बबीता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है। एंजॉय।

देखिए जी, आंखों से आंखें चार तो यहाँ पर हो नहीं सकती, यहाँ पर तो हम दिल से दिल मिलाते हैं, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो के जरिए हम दिल की बातें करते हैं और अपने मन की बातें हमारे मन की बातों में ये

शामिल है कि हम बॉलीवुड की बातें करें, क्योंकि बॉलीवुड थोड़ा सा हमें फिल्मी कर देता है और हम फिल्मी होना बड़ा पसंद कर देते हैं। और हमारे जो स्टार्स हैं वो इसीलिए स्टार्स हैं क्योंकि हमने उनको अपने दिल में जगह दी है। तो उन स्टार्स के बारे में जानना समझना नहीं चाहेंगे आप, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं और कर रहे हैं, वैसे बॉक्स ऑफिस का क्या हाल है ये भी तो जानना है। चलिए मैं बताती हूँ, फिलहाल आपको बता दूं कि आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि 11:30 बजे आपके लिए एक व्हाट्सएप मैसेज वाला करने वाला एक सवाल आएगा जिसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, तभी जब आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे ध्यान से। और आसान सा सवाल होगा वैसे, क्या पता आप वैसे भी बिना सुने भी आप जवाब दे दें, अगर आपका ज्ञान बॉलीवुड की दुनिया में उत्तम है तो। फिलहाल आपको बता दूं कि उस जवाब का अगर आप उस सवाल का जवाब अगर आपने सही दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और बॉलीवुड सरताज बनने के लिए इतनी आसान सी बात करनी हो तो कौन ही नहीं चाहेगा बॉलीवुड सरताज बनना, क्योंकि हमसे बात करने का मौका जो मिलता है आपको। फिलहाल इतनी सी बात, अभी आपको बता दूं बॉक्स ऑफिस का हाल। वेलकम टू द जंगल रिलीज हो गई और रिलीज होने के बाद क्या धमाल कमाल और बवाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर, जानना अगर आप चाहेंगे तो हम बिल्कुल बताना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या पता आपने वेलकम टू द जंगल नहीं देखी है और आप इस बात के इंतजार में हो कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर चल कैसे रही है। जब अच्छी चल रही होगी तब जाएंगे, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जिस तरह से वेलकम टू द जंगल की शानदार बातें हो रही थी, इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट, इतने सारे स्टार्स एक साथ आने को तैयार थे और ऐसे में बहुत सारी चर्चा गर्म थी, तो वो गर्मा गर्म खबर आ गई है कि अब वो चल कैसे रही है। 26 जून को ये सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और उसके बाद से ये वेलकम की तीसरी जो फ्रेंचाइजी है किस तरह से कमाल कर रही है वो बता देती हूँ। पहले दिन 15.25 करोड़ ओपनिंग हुई, उसके बाद 31.1% की अच्छी बढ़ोतरी, उसके बाद भी पॉजिटिव रिस्पांस आता रहा और खास तौर पर लास्ट के दिनों में और बढ़िया, मतलब वीकेंड पर बहुत बढ़िया कमाई की इसने। 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग की दूसरे दिन, उसके बाद कलेक्शन आता गया और अब 63.75 करोड़ भारत में और वर्ल्ड वाइड बात करें तो 59.75 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया है। सौदा बुरा नहीं है। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

श्रद्धा कपूर की एक मूवी आने वाली है ईठा। रिलीज से पहले थोड़ा सा विवादों को में घिर गई है, पता है क्यों? क्योंकि टाइटल ना कुछ अलग डिमांड किया जा रहा है कि टाइटल को बदलना चाहिए, ईठा के बजाय कुछ रियल बायोपिक जिस पर ये बन रही है मूवी वो नाम रखा जाना चाहिए। ये मूवी बन रही है लावड़ी कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के रूप में, जो श्रद्धा कपूर हैं वो निभा रहे हैं इस रोल को। और ये लावड़ी और तमाशा कलाकार हैं विठाबाई नारायण गांवकर, और इन पर जब ये मूवी बन रही है तो उनके परिवार वालों का कहना है और भी लोगों का कहना है कि भाई जब विठाबाई का कैरेक्टर निभा रही हैं, उन पर बायोपिक बन रही है, तो नाम ईठा क्यों, विठाबाई क्यों नहीं? अब फिल्म किसने बनाई है, नारायण उतेरकर जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या सोचकर या उनकी टीम ने क्या सोचकर ईठा नाम रखा है, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विवाद गहरा रहा है बॉस, और विवाद इस तरह से अगर लंबा हुआ तो क्या पता ईठा का नाम विठाबाई हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये हो सकता है। तो फिलहाल तो हम इंतजार करेंगे, नाम कुछ भी हो ये मूवी आए ताकि हम भी इस कलाकार के बारे में और बेहतर जान पाए, है ना? आप सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से या नहीं, क्योंकि 11:30 बजे आपके लिए सवाल लेकर आऊंगी। बॉलीवुड सरताज जो बनाना है आपको,

मिर्जापुर जो सीरीज आई थी उसमें आपने किसी कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दिल से पसंद किया हो तो बताइए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बिल्कुल यूनिक नहीं था। उसमें हर कैरेक्टर अपने आप में एस्टैब्लिश था, यूनिक था और बहुत एंटरटेनिंग था, है ना। और शायद इसी वजह से ये मूवी आ रही है, मिर्जापुर द मूवी। और इस मूवी में हमारे गुड्डू भैया उसी तरह की कुछ तैयारी के लेकर आएंगे, ऐसा उनका कहना है। गुड्डू भैया कह रहे हैं कि तैयार हैं एकदम, और उसी तरह की तैयारी की थी जैसे कि उन्होंने वेब सीरीज बनाने से पहले की थी। और अब ये मूवी एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के काम में बिजी है, मतलब इस पर चल रहा है ये काम। और जनता की फिल्म है और पहले सीजन की तरह ही वो ओरिजिनल कलाकार का लुक उनको दिया गया है और लोगों को वैसा ही मजा आने वाला है। गुड्डू भैया कौन? अली फजल। जानते नहीं है हमारे गुड्डू भैया को? अली फजल से ज्यादा हम गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं उनको। तो अभी तो वो निर्माता भी बन चुके हैं, अभी तो अपना प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, बहुत सारी न्यूज भी आने वाली है उनके बारे में। तो आप बस ऐसे ही सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। वैसे बीटी नहीं भी बताएंगी तो कोई और बताएगा, लेकिन इस घंटे बॉलीवुड की खबरें पक्की हैं आपके लिए। बस आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर, क्योंकि हमारे लिए पहला

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
4: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
5: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
6: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
5: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
7: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

एक मूवी बहुत पहले आई थी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और ये गाना याद है, हर किसी की जुबान पर था। और एक बात और जुबान पे थी, क्या कमाल की जोड़ी है सैफ अली खान और हमारे खिलाड़ी कुमार आई मीन अक्षय कुमार की। फिर तो ये जोड़ी बहुत लंबा इंतजार करवाती रही एक साथ आने के लिए, और अब जब आ रही है तो हम तो आपको कुछ अपडेट देना चाहेंगे ही, बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन हाँ रिलीज डेट इनकी एक साथ जो मूवी आ रही है उसकी आ गई है, तो ये खबर तो बनती है ना, 11 सितंबर हैवान मूवी देखने जाएंगे कि नहीं, और अगर नहीं जाएंगे तो इस गाने को फिलहाल एंजॉय कीजिए, तब तक मूड बनाइए।

और आप बिल्कुल खफा मत रहिए, आपके लिए सवाल एकदम रेडी है। 11:30 बजने ही वाले हैं और आपके लिए सवाल आएगा और उसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज।

तो भैया सैफ अली खान और अक्षय कुमार की सस्पेंस थ्रिलर 11 सितंबर को हैवान नाम की मूवी रिलीज हो रही है और आपको अगर देखना है तो अभी बहुत सारा टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिलहाल आप इंतजार कर रहे थे कि आपका सवाल कहाँ गया भाई, तो लीजिए आपका सवाल हाजिर है, हमारा सवाल हाजिर है जिसका जवाब आपको देना है। और अगर आज अपने साथ दिया तो बॉलीवुड से आज क्या पता आप ही हो और हमसे बात करने का मौका मिले। तो चलिए आपको सवाल अब बताते हैं। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल का जो रोल है या कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? बता तो दिया, बस आपको बताना है व्हाट्सएप मैसेज करके, कैसे? 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम। और अगर बॉलीवुड सरताज ना भी बने तो आपका नाम शामिल होना तो एकदम पक्की बात है, है ना सौदा एकदम खरा खरा। तो फटाफट अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप मैसेज कर डालिए। नंबर अगर नहीं सुना तो वो भी बता देती हूँ, इवन सवाल भी बता देती हूँ। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड रील्स, बोले तो बीटी विद बीटी।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। बीटी विद बीटी सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और आपको बता दूं कि मेरी बहुत सारी अपडेट्स बॉलीवुड की जो मैं लेकर आई हूं ना वो आप तक जा चुकी हैं, और मेरे पास एक और उड़ती उड़ती खबर आई है और अभी जस्ट आके बैठी है। तो वो ये है कि अक्षय कुमार, अभी उनकी बात हो रही थी खिलाड़ी की, इतनी सारी सीरीज आ गई है, कह रहे हैं कि क्या पता कि वो एक और खिलाड़ी सीरीज बनाने में, एक और कड़ी जोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम फाइनल कर लिया है, नाम उनको पसंद आ गया है, और वो नाम है, वो बता देती हूँ, जो कुछ भी आएगा वो बता देती हूँ, और आगे की जो अपडेट आएगी वो भी बता देंगे। आप तो बॉलीवुड ट्रेल सुनते ही है ना रेगुलरली, तो सब आपको पहुंचता जाएगा एकदम ताजा ताजा। फिलहाल तो यही खबर आई है कि वो जो खिलाड़ी की अगली सीरीज का जो किस्त लेकर आएंगे ना, अगला जो जो भी फिल्म फ्रेंचाइजी लेकर आएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे खिलाड़ी कुमार। और इसके अलावा अभी वो स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, बाकी चीजों पर काम करेंगे, लेकिन नाम फाइनल कर लिया है और वो आप तक पहुंच गया है। तो क्या पता आगे हमें खिलाड़ी कुमार भी एक मूवी के नाम से अक्षय कुमार को हम देखें। तो अभी तो फिलहाल बहुत सारी मूवीज उनकी लाइन में है और रिलीज आसपास की डेट्स में ही होने वाली है, आसपास के मंथ्स में ही होने वाली है जैसा अभी बताया था। तो उनका एंजॉय करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं और बाकी की चीजें बाद में। फिलहाल तो ये गाना एंजॉय कीजिए। और एक बार और आपको सवाल बता देती हूँ, क्योंकि बॉलीवुड सरताज बनने के लिए क्या पता अभी आपने सवाल नहीं सुना है ना।

0: देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आज का सवाल क्या है, तो आपको बता देती हूँ आज का सवाल आपने क्या पता मिस कर दिया हो, तो उसके लिए भी हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आते हैं थोड़ी देर बाद। एक बार रिपीट कर देते हैं भाई, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो जी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अहम इसलिए होता है कि आसान सा सवाल है, अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको हमसे बात करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आप बनेंगे बॉलीवुड सरताज, और रैंडमली हम किसी को बॉलीवुड सरताज चुन सकते हैं, और बस चुनने के ही लिए एकदम हम बेकरार हैं। आप जवाब तो दीजिए। सवाल यह है कि मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? मिर्जापुर द मूवी जो कि आने वाली है, वैसे तो वही नाम है जो मिर्जापुर सीरीज में था, लेकिन नहीं पता तो फिर क्या कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो वही नाम है, इतना हिंट मैं आपको दे देती हूँ। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? यही है आज का सवाल, जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। व्हाट्सएप मैसेज करना है बिल्कुल आसान, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम भेज देना है 9868107070 पर, 9868107070। सुन रहे हैं आप बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।
1: अरे बहुत

देखिए जी, आप सबके मैसेजेस की लाइन लग गई है और मैं चाहती हूं कि किसी का नाम मिस ना हो, तो फटाफट आप सबके नाम जिन्होंने जवाब दे दिया है, जो बॉलीवुड सरताज का सवाल था उसका जवाब दे दिया है, उन सबके नाम लेती हूँ। राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं और सूरज का मैसेज दिल्ली से आया है और नेक्स्ट मैसेज अरुण सेन का मध्य प्रदेश से, हरीश गौड़ मेरठ से लिख रहे हैं, विजय कुमार शालीमार बाग से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज किसका दिख रहा है भाई, ये सलीम मलिक मेरठ से हमेशा की तरह, तरुण कोहली सूरज कुंड से हमेशा की तरह, बसंत तोमर किसी ने अपनी जगह चेंज नहीं की है मेरठ से ही लिख रहे हैं, प्रवीण कुमार मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं और आसिफ मेरठ से लिख रहे हैं, दानिश खतौली से और हैरी सिंधु भटिंडा से, शंकर गोवा पंजिम से, नौ

शाद चौधरी ने भी लिखा है, लेकिन क्या लिखा है ये लंबा मैसेज है, वो जो नहीं शामिल हो सकता। और उसके बाद अनूप साहू का मैसेज दिख रहा है, और कहां से ये नहीं दिख रहा है। पूजा एंड कोमल हरिनगर न्यू दिल्ली से नेक्स्ट मैसेज है, किसका अपना नाम सबसे पहले लिखना चाहिए था भाई, श्रेयांश, नहीं तो अगली बार से नाम नहीं शामिल होगा। रोहिणी दिल्ली से ये मैसेज आ रहा है, मिसेज धर्म भाटिया का भी मैसेज आ रहा है बठिंडा से, और चित्रंजन सक्सेना का मैसेज नोएडा से आ रहा है, जाहिद अहमद का मुजफ्फरनगर से आ रहा है, और उसके बाद अरुण कुमार का भी मैसेज शायद चंडीगढ़ से आ रहा है। और ये है किसका नाम नहीं लिखा, विवेक मैंने ढूंढ निकाला आपका नाम, क्योंकि हमारा कंप्यूटर ना ढूंढ लेता है, आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा था, अगली बार से ध्यान रखिएगा। उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं, गोविंद पंडित, ये बहुत सही है, गोविंद पंडित, पंडित ने सही जवाब में भी पंडित लगाया है।

बठिंडा से और चितरंजन सक्सेना का मैसेज नोएडा से आ रहा है, जाहिद अहमद का मुजफ्फरनगर से आ रहा है और उसके बाद अरुण कुमार का भी मैसेज शायद चंडीगढ़ से आ रहा है। और ये है किसका नाम नहीं लिखा, विवेक मैंने ढूंढ निकाला आपका नाम क्योंकि हमारा कंप्यूटर ना ढूंढ लेता है, आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा था, अगली बार से ध्यान रखिएगा। उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं, गोविंद पंडित, ये बहुत सही है, गोविंद पंडित, पंडित ने सही जवाब में भी पंडित लगाया है, वेरी गुड। मोहम्मद फरकान सियाल मेरठ से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज किसका है भाई, अररिया बिहार से, और राकिब का मैसेज है, कुछ ऐसा ही नाम है और मैं जल्दी जल्दी में अगर गलत पढ़ूं तो देख लीजिएगा क्योंकि आपने सबसे पहले अपना नाम नहीं लिखा तो ढूंढना पड़ा मुझे। और सुप्रीत का मैसेज दिल्ली से लिखा है, अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर से, और इरशाद अशरफी का भी मैसेज दिख रहा है, और किसका मैसेज दिख रहा है, प्रदीप सागर का मैसेज दिख रहा है, वसंत बिहार से, ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, और मोहम्मद इमरान का, इमरान बिहार से लिख रहे हैं, और मोहम्मद फरकान का भी मैसेज कहीं था, अगर नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मिस हो गया ना तो कम से कम 50 मैसेज इस बात के लिए आएंगे कि आपने मेरा नाम शामिल क्यों नहीं किया। बहुत डर लगता है भाई। सुनते रहे बीटी विद बीटी, बॉलीवुड सरताज ढूंढ कर लाती हूँ, आप सब रेडी रहिए, नेटवर्क में रहिए, क्या पता आप ही को ट्रिंग ट्रिंग घंटी बज जाए।

0: मिलेगा।
1: म्यूजिक मस्ती
2: वो सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ बीटी विद बीटी। और सबसे बढ़िया इंतजार आप सब के लिए जो है वो ये रहता है कि बॉलीवुड सरताज क्यों कौन बनेगा। कहीं आपकी कॉल आपको तो कॉल नहीं आने वाली है और आपका इंतजार अब खत्म हुआ। बॉलीवुड सरताज जिसको भी बनना है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये चुकी हैं। अब ये तो अब बस थोड़ी कुछ सेकंड्स में खुलासा हो जाएगा, लेकिन कुछ नाम है जो मिस हो गए, जैसे बही। कुछ ऐसा नाम होता है क्या? कार्तिक शायद नाम है सही, लेकिन उन्होंने बही नाम क्यों लिखा पता नहीं। और एक मैसेज मुझे बिहार से दिख रहा है और नाम फिर भी नहीं लिखा है, परवेज महाराष्ट्र से लिख रहे हैं और इन सब ने बड़ा इंसिस्ट किया मेरा नाम ले लीजिए। लीजिए आपका नाम हमने ले लिया, लेकिन हाँ अब आपका इंतजार खत्म। बॉलीवुड सरताज हमारे साथ हैं और वो अपना नाम खुद स्वयं अपने आप बताएंगे। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं आप?
1: हाँ जी मैम, बबीता जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ।
0: अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: नमस्कार जी।
0: तो अर्चना जी, क्या करती हैं आप और कितना सुनती हैं आप आकाशवाणी रेनबो और कैसे बॉलीवुड सर

0: आज मैं आना हुआ आपका
1: मैं
0: बॉलीवुड
1: सीमा
0: ट्रेल।
1: पर सुनती हूँ और मेरा फेवरेट प्रोग्राम है ये बॉलीवुड ट्रेल
0: हाँ
1: और उसके बाद रेडियो डॉक्टर।
0: ओके, दो आपके फेवरेट शोज हैं, है ना? रेगुलर सुनती हैं आप शो,
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छी बात है। और आपको इसका मतलब काफी कुछ जानने समझने में इंटरेस्ट है ना? अलग है।
1: बहुत अच्छा लगता है, घर के काम अच्छे से हो जाते हैं और म्यूजिक से मेरा लगाव बचपन से ही है। गाने सुनती भी हूँ और गाती भी रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ और मजे से काम करती हूँ।
0: वाह, और हम भी यही चाहते हैं कि आप अपना काम करते रहें और खुश होकर काम करें, गाते
1: बिल्कुल
0: गुनगुनाते काम करें, और यही रेडियो का मकसद होता है। और साथ में इन्फॉर्मेशन आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, आपके देश में जो कुछ भी हो रहा
1: जी
0: है ना? तो चलिए, आकाशवाणी रेनबो सुनकर आपने बताया कि किस तरह से अपना टाइम आप व्यतीत करती हैं, बहुत अच्छा लगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, आज आप बनी हैं बॉलीवुड सरताज, कैसा लग रहा है? बाद में पूछूंगी, पहले मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब एक बार आप ऑफिशियली दे दीजिए। मैंने पूछा था कि अली फजल, जो कि मिर्जापुर द मूवी में भी आ रहे हैं, सीरीज में तो थे ही, उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम
1: हाँ जी,
0: मिर्जापुर द
1: उनके
0: मूवी में क्या है?
1: जी उनका नाम है गुड्डू भैया।
0: गुड्डू भैया और गुड्डू पंडित, ये नाम है जिसके नाम से वो फेमस है,
1: जी
0: और काफी इस नाम की चर्चा है पूरे के पूरे मिर्जापुर सीरीज में। अब मूवी आएगी तो मूवी में ऑफ कोर्स, क्योंकि लीड रोल है तो होगा ही, है ना? तो काफी
1: हाँ
0: फेमस
1: जी
0: कैरेक्टर, आपने देखी हुई है ये सीरीज?
1: नहीं, मैं टीवी और सीरीज देखती रही हूँ लेकिन मैं नॉलेज रखती हूँ। अब
0: नॉलेज,
1: टीवी से मेरा नाता टूट गया है जब से मैंने रेडियो से जुड़ी हूँ।
0: अरे वाह, मतलब रेडियो आपको ज्यादा इजी लगता है सुनना और ज्यादा
1: बहुत अच्छा
0: एंटरटेनिंग
1: लगता है,
0: लगता
1: पॉकेट में रेडियो न्यूज ऑन एयर पे सुनती हूँ
0: है?
1: और काम करती हूँ, जहां जाती हूँ चलता ही रहता है रेडियो मेरा न्यूज ऑन एयर पे। जी
0: अर्चना जी, आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन आज के बॉलीवुड सरताज बनने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से दिल तक जुड़े रहे आकाशवाणी रेनबो से।
1: जरूर,
0: चलते चलते कुछ
1: धन्यवाद। हाँ
0: कहना चाहेंगी?
1: जी
0: कुछ कहना चाहेंगी और?
1: जी मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि रेडियो के इतने अच्छे प्रोग्राम सुनती हूँ, इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, खास करके रेडियो डॉक्टर और ये बॉलीवुड दोनों ही मेरे मतलब ये फेवरेट टॉपिक्स हैं। जी
0: थैंक यू सो मच, इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, ठीक है?
1: धन्यवाद बबीता
0: ओके
1: जी, थैंक
0: बाय।
1: यू।
0: इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी कहना होगा चा चा बाय, और आप सब अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपने डेली के काम भी और रेडियो भी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: प्रोग्राम घर परिवार लेके हाजिर हाँ। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त दीपा छाबड़ा ते मेरे वालों सारिया भैणा नूं प्यार भरी नमस्कार। हाँ जी भैनों, की हाल चाल ने जी? तुहाडे काम कार मुक गया कि नहीं? तुहाडा जे नहीं भी मुक्या तो भी कोई चक्कर नहीं, काम कार करते करते भी तुसी साडे आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रोग्रामा दा आनंद ले सकते हो। ते भैनों, कर परिवार दा हिस्सा सेहत भी हुंदी है, ते अज दा साडा सिलसिला है जी सेहत संभाल, जिस दा विषय होएगा जी अमन इज्जत सुरक्षा हर एक दा हक अते विश्व दे मुद्दा मौकियां दा मानसिक सेहत ते असर, जिदे विच असी तुहाडी मुलाकात करवावांगे डॉक्टर तरुण प्रीत कौर जी दे नाल, जिहड़े कि सिविल होस्पिटल बठिंडा दे विच साइकैट्रिस्ट दीआं सेवावां निभा रहे ने, ते उहनां नाल गल बात करनगे खुशप्रीत शेरगिल। ते तुहाडी जानकारी लई दसदा मैं भैणा कि ये सिलसिला तुसी पहलां भी सुन चुके हो, ते आओ जी सुनदे हां ये गलबात सिलसिला सेहत संभाल दे तहत।
1: जी श्रोतियो, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच। ते अज साडे नाल स्टूडियो विच जुड़े ने डॉक्टर तनुप्रीत कौर जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा साडे अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच।
2: सत श्री अकाल जी, थैंक यू। मैं ऑल इंडिया रेडियो बठिंडा प्रोग्राम इंचार्ज बलजीत शर्मा जी का धन्नवाद करती हां कि मैनू इत्थे आन दा गलबात करन दा मौका दिता।
1: जी डॉक्टर साहब, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसी अपने कीमती समय चो समा कढ के साडे स्रोतियां दे रूबरू होए। ते स्रोतियो, तुहाडी जानकारी लई दसना चाहांगे कि डॉक्टर तनुप्रीत कौर जी MD साइकैट्री ने और मानसिक रोगां दे माहिर डॉक्टर दे तौर ते सिविल हस्पताल बठिंडा विखे अपनियां सेवावां निभा रहे ने। ते अज दा साडा विशा है जी अमन इज्जत सुरक्षा हर एक दा हक ते विश्व मुद्दा मौकियां दा मानसिक सेहत ते असर। सो अज थोड़ा जा वखरा जा विशा लैके असी हाजिर होए आ। डॉक्टर साहब, आपां प्रोग्राम दी शुरुआत कर लैने आ जी। जिस तरह गल कीती के बई अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते ए जिहड़ा दिवस है ए मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सैक्सुअल वायलेंस इन कनफ्लिक्ट, ए जिहड़ा दिन है मनाया जांदा है जिन्हों असी जिनसी हिंसा दे खात्मे दे लई वी दिन कह दिंदे आ, कल यानी कि 19 जून नूं ए दिन मनाया जाना है। सो इस बारे साडे स्रोतियां नूं जानकारी दिओ भी ए दिन मनाउण दी सानूं की लोड़ पैगी जां क्यों मनाया जांदा है जां इस दिन नूं मनाउण दा उद्देश की है जी।
2: जो ए वाला दिन है 19 जून, ए साल 2015 तों अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते यूनाइटेड नेशन जो एजेंसी है उन्हां वल्लों मता 2008 च पास होया सी, बट शुरुआत इंदी 2015 तों होई। ए वाला दिन जो खास तौर ते जंगां दे समें विच जिनसी हिंसा हुंदी है उसके खात्मे लई ए दिन समर्पित है। ए उन्हां सर्वाइवर्स लई समर्पित है जिन्हां ने उस टाइम जो जिनसी हिंसा है उसनू फेस किया उस तों बचे। प्लस इस दिन दे जो मुख उद्देश है वह हैगी है जागरूकता फैलानी। स्कूल दे विच हर थां ते इंटरनेशनल लैवल ते दस्या जांदा है कि इस तरह के केसेस हुंदे है, क्योंकि एक केसेस जिन्ने रिपोर्ट हुंदे है असल मायने विच उस तों ज्यादा है। क्या जांदा है कि 10-20% केसेस अंडर रिपोर्टेड हुंदे है। हर एज ग्रुप अफेक्टेड है, मेल फीमेल, पर बच्चे ज्यादा अफेक्टेड है। दूसरा इसका उद्देश इंसाफ दिलाना, जो उस तों सरवाइव किते है उन्हां नूं, जो इस वायलेंस तों सरवाइव किते उन्हां नूं इंसाफ दिलाना। तीसरा इसकी रोकथाम, रोकथाम दे लई पुलिस नूं आर्मी नूं उत्थों दी जो गवर्नमेंट है उन्हां सारिया ने की स्टेप्स लैने है ताकि अगे तो इस तरह की जो कोई भी वॉर वाली सिचुएशन होंगी है तो इस तरह के मामले घट तो घट हो। केस का मुख्य उद्देश होंदा है कि जेडे सर्वाइवर्स है उन्होंने सपोर्ट करना, उन्दे विच फिर रोल आ जाता है डॉक्टर्स का, काउंसलर्स का, सोशल वर्कर्स, NGOs, सारे जने मिलजुल के उन्होंने सपोर्ट करते
1: जी। डॉक्टर साहब, असी रोल बारे भी गल करांगे भी किवें असी ठीक करते हैं इस तरह के लोगों, पर उस तो पहला स्रोतियां के मन के विच भी

देबी मखसूस पुरी विशेष सिर्फ दोस्तो एक प्रोग्राम नहीं ए जज्बाता दा सफर है अपना विरसा अपना सभ्याचार पंजाबी मिट्टी दी खुशबू दे नाल दोस्तो सुनना ना भूलना मिती 29 जून 2026 दिन सोमवार बलजीत शर्मा ते गुरदीप कौर गिल जी दे सांझे उद्दमा दे नाल अपना विरसा अपना सभ्याचार दा एक हिट शो देबी मखसूस पुरी जी नू समर्पित प्रसारण समा शाम 5 बजे दिन सोमवार।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: 1966 तो चल रही नैक तो दूजी वार ए ग्रेड अते यूजीसी तो ऑटोनोमस स्टेटस दा दर्जा हासिल करन वाली शहर दी एक लौती नामवर संस्था एसएसटी गर्ल्स कॉलेज बठिंडा विच चल रहे कोर्सेज बीए बीकॉम बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल सीएसएम बीसीए बीबीए बीलिब पीजीडीसीए पीजीडी इन योगा पीजीडी इन बैंकिंग अते इंश्योरेंस पीजीडी इन वेब डिजाइन एमए इंग्लिश हिंदी अते पंजाबी एमकॉम एमएससी मैथ्स एमएससी आईटी एमबीए एमसीए एमएससी फैशन डिजाइनिंग अति 4 साला बीए बीएड आईटेफ विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला होस्टल कंपटीशन सेल एनईपी अनुसार 3 अति 4 साला यूजी प्रोग्राम्स हर वर्ग ले स्कॉलरशिप स्कीम्स वधेरी जानकारी ले एसएसटी गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171 94 175 57 848 98 720 65 150।
0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
3: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम घर परिवार।

0: जी गीत तो बहुत प्यारा चल रहा है, पर एक स्रोता साडे नाल जुड़े ने ते अज भैणा लगदा बिजी है ते वीरे कहंदे असीं वी रसोई दे विच जाने आ ते एक वीरे तो असीं पुछ लैने कि ओ की बना के सानू अज खवाण वाले ने। हैलो
1: हेलो सश्रीकाल जी, सश्रीकाल, कौन बोल रहे हो? सुखराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जायका दे विच। अज की बना के खवाओगे फिर अपने घरे भी ते सानू भी? बनाओगे? बहुत वधिया जी, दस दियो फिर।
2: खंड भी एक कल नवी बाती
1: जी
2: भी एक कर लो,
1: घ्यो भी एक जहा कर लो, ठीक है,
2: आटा भी एक कर लो।
1: की कर लो?
2: पूरा वधिया
1: जी
2: बाशा हो लग जी
1: जी,
2: फिर इन्हें कहा चाशनी पा दो जी सारी,
1: ठीक है, जदों कि ओह ते आटा भुन्ने जान चंगी तरह ते उस तो बाद जेड़ी तुसी चाशनी बनाई है ओह विच पा दिए, ठीक है।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: ते तुसी प्रोग्राम पहला सुन रहे सी जदों मैं शुरू च दस रही सी कि एक बहुत जरूरी चीज जेड़ी आपां मिस कर दिंदे हुंदे आ ओह की दस्या सीगा मैं? अच्छा फिर
2: मैं
1: दिमाग शब्द चल रहे होण ते प्यार बहुत जरूरी है ते जदो तुसी ये पाओगे तो फिर देग दा स्वाद बहुत वधिया हो जाएगा ते बहुत वधिया जी। ते उस तो बाद हुण देग तैयार हो गई ते फिर तुसी हुण गुरुद्वारे चले हो देग बना के? जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी, तुसी बहुत प्यारी जी रेसिपी साडे लई सांझी कीती, ठीक है। इसे तरह घर दियां जिहड़ियां सुहाणियां ने उहनां नूं भी क्या करो कि फोन मिलान ते कोई रेसिपी दसन, है ना जी?
2: मिलाउंदियां ने,
1: अच्छा, चलो चलो कोई गल पर हां नहीं चंगा होया सानू पता लग गया कि तुहानू भी कुछ बनाउणा आंदा, क्योंकि ना रसोई दे विच हुण असीं है ना कुड़ियां थोड़ी रसोई दे विच पसीना बहाई जावांगे, कदे कदे तुसीं भी तां आने चाहीदे हो रसोई घर
2: दी,
1: है ना? बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा प्रोग्राम दे विच भाग, बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग

0: की गई थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने

0: अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 2:30 ਤੇ 23 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के जे दिल लैण दी आस रखी वे बुलिया, प्यार भी जे लालच नाल कीता तां की कीता। जी साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते वेरी गुड आफ्टरनून दे नाल आ गई हां जी मैं।

मैं दीपा छाबड़ा ते तुहाडी दोपहर नू सुरीली बनाऊंगी। प्रोग्राम दा नाम है जी सुरीली दोपहर। ते जी दिन सोमवार नू सुरीली दोपहर हुंदी है सुरीली तुहाडे नाल तुहाडे फोन कॉल्स दे नाल। ते फोन नंबर मैनू पता है कि साडे स्रोतियां नू चंगी तरह याद है 0164-2240-331। ते तुसी ए मिलाना है फोन ते उस तो बाद अपनी फरमाइश दसनी है, कोई पंजाबी गीत दसना है जिहड़ा कि असी तुहाडे लई ते बाकी स्रोतियां दे लई वजावांगे। ते फिलहाल दीपा छाबड़ा तुहानू सुनाएगी अपनी पसंद दा गीत, ते उदों तक तुसी लग जाओ फोन नू डायल करन ते।

देबी मखसूस पूरी विशेष सिर्फ दोस्तो एक प्रोग्राम नहीं ए जज्बातां दा सफर है अपना विरसा अपना सभ्याचार पंजाबी मिट्टी दी खुशबू दे नाल दोस्तो सुनना ना भुलना मिति 29 जून 2026 दिन सोमवार बलजीत शर्मा ते गुरदीप कौर गिल जी दे सांझे उद्दमां दे नाल अपना विरसा अपना सभ्याचार दा एक हिट शो देबी मखसूस पुरी जी नूं समर्पित प्रसारण समा शाम 5 बजे दिन सोमवार।

जी प्रोग्राम चल रहा है सुरीली दोपहर ते मेरे नाल जेड़े सर जुड़े सन ओ किसे वजह करके उन्हां दी कॉल कट्टी गई, पर उन्हां दी पसंद ते मैं बड़ा खूबसूरत गीत नरिंदर बीबा जी दी आवाज़ दे विच तुहानू सुनवा रही हां, जिस दे विच उन्हां दा साथ दित्ता साबर हुसैन ने। ते ये गीत करदे हां जी, तुहाडी नज़र साडे पिछले स्रोता दी डिमांड ते।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सुरीली दोपहर ते लगातार साडे श्रोते साडे नाल जुड़ रहे ने अपनियां फरमाइशां लेके ते देख लेने अगले श्रोते कौन ने। हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो?
1: जिला बरनाला, पिंड ढिल्लवां तो सुखदीप सिंह गिल बोल रहे, नाम दर्जी जगदीप सिंह गिल
0: जी। गिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: तुहाडा भी स्वागत जी साडे पिंड ढिल्लवां दे विच।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते फिर गिल साहब, केड़ा गीत सुनोगे अज?
1: गीत ही सुना दो मैनू, सरदूल सिकंदर दा रोडवेज दी लारी।
0: बहुत वधिया जी, आ रहा जी गीत तुहाडे रेडियो ते, ते प्रोग्राम दे विच शामिल होण लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया जी, शुक्रिया तुहाडा।
2: दोस्तों, एक स्टेज उत्ते पंजाब दे छे मशहूर कलाकार आए हुए ने, जिन्हां दे विच यमला जी, मुहम्मद सदीक, कुलदीप माणक, सुरेंद्र छिंदा, गुरदास मान ते करतार रमला। इन्हां नूं लोकी फरमाइश करदे ने कि जिहड़ा मुहम्मद सदीक जी दा गीत गाया होया है, आ गई रोडवेज दी लारी, ना कोई शीशा ना कोई बारी, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ। ਲਓ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੀਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ 6 ਨੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी आनंद मार रहे हो प्रोग्राम सुरीली दोपहर दा।
1: जी बिल्कुल, तुसी आनंद मान रहे हो प्रोग्राम सुरीली दोपहर दा अपनी रेडियो दोस्त दीपा छाबड़ा दे नाल। ते समा इस वेले 2:47 दा हो चुके ते अगले एक स्रोता साडे नाल जुड़े ने, ते देख लैने आ जी कौन ने ते कित्थों साडे नाल जुड़े ने। हेलो हेलो, सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, कौन बोल रहे हो? सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज थोड़ी जी ना मैनू लगदा फोन लाइन नू गर्मी लग गई है, ते तुसी गीत जेड़ा मैनू दस्या सी ओ मैं गीत कढ़िया वे, ठीक है, ते मैं गीत तुहाडे लई बजा रही हां, ते तुहाडा प्रोग्राम दे विच शामिल होण लई बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। जी जी, धन्यवाद।

0: स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
1: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे
0: देखो
1: बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
0: बिल्कुल। और देखो कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो
1: हाँ
0: बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती है कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले,
1: जी
0: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल
1: हाँ
0: रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी।
1: जी
0: तो तुम समझ गई होगी कि आज
1: हाँ
0: क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
1: बिल्कुल। आज वट सावित्री का व्रत है, जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह,
0: बिल्कुल
1: जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूज कर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है
0: बिल्कुल
1: आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी
0: बिल्कुल।
1: जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले हो चुकी है
0: हाँ,
1: पूजा।
0: उस साइड
1: जी
0: में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं,
1: जी
0: पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस
1: जी
0: तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं,
1: जी
0: है ना नहीं?
1: जी बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: वे देखिए,
0: तो
1: तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो
0: बिल्कुल।
1: है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये
1: जी
0: कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहां पे अभी नहीं ली वहां पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: सखी सहेली
1: सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे एक आज की कसर
0: जी।
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसा पूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज

0: इसलिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था, और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज है, केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
3: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े।

0: हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
1: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है। पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
2: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
1: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
0: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
3: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष में मेरे साथ क्या रियायत होगी? मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
0: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
1: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
4: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
2: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
4: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
2: वाह वाह वाह वाह, यहां भी चलते हुए।
1: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
2: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
3: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेरे

0: के अंदर रख गए थे। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
1: वो ये कागज था, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉअर में से क्यों निकाला इस कागज को?
0: मुझे मेज पर नहीं मिला।
1: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉअर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
2: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
3: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
2: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
3: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है।
4: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिक लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे।
2: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
3: मक्कार का मुंह काला।
2: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई। बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
7: तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
8: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
7: जी।

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए।
1: भाई बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर
0: जी
1: समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है,
0: जी
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा
0: जी
1: सकता है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ही जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो

0: बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए। और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज इन चीजों से आप दूर रहिए और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
1: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं करे, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो निहल किरदार में आपको क्यों ढलना है,
0: क्यों ढलना है। और निहल जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की, संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इससे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो

0: वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है,
1: मुश्किल
0: वहां
1: है।
0: संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना ही दी है।
0: तो ये सब तो हमने सुन लिया लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की
0: भाई,
1: बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी।
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: यह है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहां केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी।

0: और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी है वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
1: वो वही अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
0: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्हें तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है, और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
0: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती है ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है, रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं, लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना, थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है, तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: तो
0: वो एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है,
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिल के काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो
1: तो ये
0: देहा,
1: जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्तों को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता ये बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे।

0: ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखें, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
1: बिल्कुल,
0: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र है
0: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह। जिसमें
1: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
0: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
1: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए अच्छा सा,
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना।
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको, आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो है वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना।
1: हाँ
0: और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको IBP हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको
1: हाँ
0: नमक, जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ना ये क्या बना
1: तो
0: दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक का आपके स्वाद के अनुसार। अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आप

0: दो बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर, 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौरियां तो बन ही चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए, समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: तो बस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: Thank you.

0: की सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन

0: होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है, और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला खराब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहां से खाने की पाइप शुरू होती है वहां पे काफी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों हो
1: अल्सर।
0: रहा है?
1: ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं,
0: जी
1: और एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाई नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहां पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
0: जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है, और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूं कल रात को, ठीक से सोया हूं कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूं अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती,

0: वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ओके तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं।
1: जी,
0: तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है।
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई है, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही
0: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: दर्द जिगर दिल में जगाया आपने।
1: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
2: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम
1: जी,
2: ना,
1: जी.
2: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
1: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
2: हाँ
1: है?
2: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
1: जी
2: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
1: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज, खास तौर से जो योगा करते हैं, उनमें बहुत

0: सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं,
0: ओ
1: पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है
1: बिल्कुल पढ़ सकता है।
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई वो कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? तो
0: हाँ
1: बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ,
0: जी
1: पेशेंट
0: जी
1: का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
0: जी
1: पानी
0: जी
1: नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
1: बिल्कुल,
0: ख्याल
1: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: से। तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना क्वाइट फेमस
0: जी
1: मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी
1: और
0: क्या
1: काफी
0: बात
1: सुना
0: है
1: है हमने।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे, जो बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या-क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया 1 सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई, AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं। छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है, जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडी लग रही हो रहा है, बटन दबाता है और विदिन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो सिम खाली एक सिम्टम हो सकता है। तो
0: जी
1: उसको 24 आवर pH मैनोम pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द इसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से

0: तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस। ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतरी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: कसम, खाओगे ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ,
1: तेरी कसम आऊंगा।
2: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
3: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
3: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन आल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
2: जी, जी।
3: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो,
2: क्योंकि
3: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो

0: पॉसिबिलिटी इसके, बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके
1: जी
0: लिए
1: जी
0: आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
0: कुछ
1: कहा
0: तो
1: कि
0: है, देर इज सम
1: जी हाँ
0: कोरिलेशन बिटवीन
1: ओके,
0: डाइट, नॉट
1: तो
0: ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है, तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं,
1: ओके
0: बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर
1: यस
0: आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो
1: हाँ
0: माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है, तो
0: हाँ,
1: ये
0: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज। धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है, बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है, जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता
1: जी,
0: है,
1: जी, जी,
0: ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में

0: स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के। दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। एक सोनोग्राफी करेंगे, उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
0: जी। और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
1: नहीं, जरा भी नहीं है। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ
0: जी,
1: नॉर्मल कटते रहती है।
0: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है, तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है।

0: यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
1: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या
0: जी
1: नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई, कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रिडोमिनेंट प्रॉब्लम, तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि
0: जी
1: आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो
0: जी
1: बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स, बट सेंसिटिविटी। दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
0: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी
1: हाँ,
0: या
1: तो
0: कुछ नहीं?
1: नहीं, हाँ ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए, ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड। बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में।
0: जी
1: कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए। पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो, ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग। अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो,
0: चले चलो लगान का,
1: लगान का,
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल दे रही ये तेल अच्छा है, ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाईज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: स्टेरॉइड भी आ रहा है
0: स्टेरॉइड्स
1: आजकल
0: भी
1: आप
0: आता
1: बता
0: है।
1: रहे हैं।
0: और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हुणे तुसी विविध भारती दे प्रोग्राम सुन रहे सी। एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा हो रहा है शाम दे 5:15। पेश है प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत।

आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार। तुहाड़ा दोस्त लवलीन सचदेवा प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत लैके तुहाडी सेवा विच हाजिर है। अज इस प्रोग्राम तहत तुसी सुनो साडा विशेष प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार, जो आधारित है पंजाबी गायक गीतकार शायर ते कवि देवी मखसूसपुरी ते। अज इस प्रोग्राम तहत तुसी इस दा भाग दूजा सुनो। आवाज ते निर्माता निर्देशक जनाब बलजीत शर्मा, संपादन गुरदीप गिल दा।

0: केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: मौज बहार।
0: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: मौज बहार।
0: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।

श्रोते और रानी रणदीप देकाए इसकी दिनाल ही अपने रेडियो दोस्त लवलीन सजदेवानू प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत खत्म करन दी आग्या देओ। रब खैर करे, फिर मिलांगे।

0: देश है सबका फेवरेट।
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: नहीं थे हाँ।
4: तेनू नहीं अनु, मोबाइल चार्ज करना सी,
3: दिमाग चार्ज कर रखना।
5: अजय पब्लिक पोर्ट नो चार्ज कीता ता तुहाडा निजी डाटा हो जावेगा पब्लिक।
3: देखिया
4: पापा रुको मैं पे करदा हां। नो सिग्नल,
5: हुण की करोगे?
4: मुफ्त वाईफाई है ना।
3: मूर्खा सुधर जा।
5: पेमेंट्स ले कोई ओपन वाईफाई नहीं,
4: मतलब धोखा तड़ी नू बाय बाय।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर पे स्मार्ट।
7: 1966 तो चल रही नैक तो दूजी वार ए ग्रेड अते यूजीसी तो ऑटोनोमस स्टेटस दा दर्जा हासिल करन वाली शहर दी एक लौती नामवर संस्था एसएसटी गर्ल्स कॉलेज बठिंडा विच चल रहे कोर्सेज बीए, बीकॉम, बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल, सीएसएम, बीसीए, बीबीए, बीलिब, पीजीडीसीए, पीजीडी इन योगा, पीजीडी इन बैंकिंग अते इंश्योरेंस, पीजीडी इन वेब डिजाइन, एमए इंग्लिश, हिंदी अते पंजाबी, एमकॉम, एमएससी मैथ्स, एमएससी आईटी, एमबीए, एमसीए, एमएससी फैशन डिजाइनिंग अति 4 साला बीए बीएड आईटेक विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला होस्टल, कंपटीशन सेल, एनईपी अनुसार 3 अति 4 साला यूजी प्रोग्राम्स, हर वर्ग ले स्कॉलरशिप स्कीम्स। वधेरी जानकारी ले एसएसटी गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171 5148 98 527 5848 98 527 5848।
1: हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
8: स्वागत है दोस्तों

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: आवाज़ दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार, तुहाडा दोस्त लवलीन सहदेवा प्रोग्राम श्याम सुहानी लेके तुहाडी सेवा विच हाजिर है। दोस्तों, आबाद चाहे शहर रखिए, आबाद चाहे शहर रखिए, मगर गांव में भी घर रखिए। पुरखों की वो मिट्टी प्यारी, सदा उसकी भी खबर रखिए, सदा उसकी भी खबर रखिए। दोस्तों, चाहे ऐसी तरक्की दे कोई भी शिखर क्यों ना हासिल कर लीए, पर अपनी मिट्टी, अपने पिंड, अपनी सरजमीन नाल सानू मोहब्बत प्यार होनी चाहिदी है। तुसी मेरी इस गल नाल किन्ने कु सहमत हो, जां फिर तुसी अपनी पसंद दा कोई भी गीत सुनना होवे तां हुणे डायल करो 0164-2240-331। तुहाडी फोन कॉल दा इंतजार करदा होया चला रहा तुहाडे लई एक गीत।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
0: पेश है सबका फेवरेट।

0: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
1: जी हाँ श्रोतियों, तुसी आनंद मान रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सजदेवा दे नाल। वेखदे हां किसने डायल कीता है 0164-2240-331। हैलो
2: लवलीन सचदेवा जी, सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार। कौन जनाब बोल रहे ने, केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
2: अमरजीत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं, बठिंडा तो आथन दा आया।
1: अमरजीत सिंह सिद्धू जी, प्रोग्राम शाम सुहानी विच आप जी दा स्वागत है।
2: धन्यवाद जो जोगे।
1: की हाल चाल ने?
2: बहुत बढ़िया, आनंद आ थोड़ी आवाज सुन के नजारे आए।
1: ये आनंद आना चाहिए, असि बैठे ही ऐसे लई हां। की काम कार करदे हो जनाब?
2: सिलाई
1: का काम कर दे। सिलाई का काम कर दे, आकाशवाणी बठिंडा दे प्रोग्राम भी सुनते रहने हो?
2: काम हो गए ना, रेडियो सावन चलते रहना
1: पड़ा। वाह, ये बड़ा वधिया लगता है कि साडे स्रोते सवेर तो लेके शाम तक साडे नाल जुड़े रहंदे ने। काम कार कैसा है? अपनी फरमाइश दस दियो। बड़े प्यारे गीत की फरमाइश की जी। अमरजीत जी फोन करने लई शुक्रिया।
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
1: पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

0: जिला उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया जी उज्जैन से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से।
0: जी हाँ जी,
1: क्या बात है, प्रोग्राम श्याम स्वानी में आपका स्वागत है श्रीमान।
0: थैंक यू सो मच सर। मोबाइल एक्सपे में सुन रहा हूँ कार्यक्रम शाम सवानी,
1: अच्छा कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा है और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से इतने प्यारे श्रोता हमसे बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं
0: जी
1: आपके?
0: हाँ बहुत अच्छा है, और अभी हमारे यहाँ पे बरसात भी हो चुकी है। हाँ
1: बरसात हो चुकी है।
0: जी, सोयाबीन की फसल लगाई है किसानों ने यहाँ पर।
1: अच्छा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, हमारे लिए भी भेज दीजिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से सप्लाई हर जगह होती है सोयाबीन की फसल हमारे यहाँ से।
1: हमारे यहाँ तो तपिश बहुत ज्यादा है, 42 डिग्री तापमान चल रहा है हमारी धरती का, हमारे पंजाब का।
0: जी
1: हमारा ख्याल रखिए और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे। हाँ
0: जी जी पंछी का सुनवा दीजिए रब्बा।
1: हाँ हाँ इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बठिंडा के प्रोग्राम। फोन करने के लिए शुक्रिया श्रीमान
0: जी थैंक यू सो मच जी।
1: जी। पेश है तुहाडी फरमाइश ते फिल्म हीरोपंती दा एक ही।

0: जी हाँ श्रोतियों, वेखते हैं कि श्रोता ने डायल किया है 0164-2240-331। हेलो,
1: हेलो, सत श्रीकाल भाई
0: सत
1: जी।
0: श्री अकाल, नमस्कार। कौन जनाब बोल रहे ने, केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: नंद राम जी, पिंड मिठड़ी ते जिला मुक्तसर जी।
0: नंद राम जी, मिठड़ी तो बोल रहे हो, प्रोग्राम शाम सुहानी विच आप जी का स्वागत है श्रीमान।
1: शुक्रिया जी।
0: की हाल चाल ने?
1: ठीक है जी, अपने
0: और
1: दसो। प्रोग्राम
0: आकाशवाणी बठिंडा के प्रोग्राम कहो जे लगते ने?
1: बहुत वधिया लगते जी, सारे सुबह तो शाम तक सारे सुनी दे जी।
0: अच्छा, प्रोग्राम शाम सुहानी किवें लगता है?
1: शाम सवानी भी ठीक है ते ज्यादा था ये जरा शनिवार नु चलता है सजरी सवेर चो सुन।

0: है। हरियाणा ते राजस्थान सरकार ने अज नवी दिल्ली च यमुना जल प्रोजेक्ट बारे एक समझौते ते दस्तखत किए। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़काच ने पंजाब सरकार नूं श्री अकाल तख्त साहब वल्लों बेअदबी विरोधी कानून संबंधी उठाए सारे एतराजा का एक महीने के अंदर हल करने के दिए निर्देश। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलस 2028 ओलंपिक खेडों लिए क्वालीफाई किया। इस राष्ट्रीय खबर का बुलेटिन खत्म होया। राष्ट्रीय खबर का अगला बुलेटिन सुनोगे सवेरे 8:30। नमस्कार।
1: हुणे तुसी पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र राहीं सुन रहे सी। एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा हो रहा है 7:40 ते 25 सैकेंड। श्रोतियो प्रोग्राम शाम सुहानी विच तुहाडा एक बार फिर स्वागत है। वेखदे हां किसने डायल कीता है 0164240331। हैलो
2: हेलो, सत श्री अकाल भाई जी।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, नमस्कार
1: जनाब। अपना नाम ते ग्रां दस दियो।
2: जिला बरनाला पिंड ढेलमा तो सुखदीप सिंह गिल बोलदा जी। नाम मेरा भतीजे जगजीत सिंह गिल।
1: सुखदीप सिंह गिल जी, तुहाडे भतीजे जगदीप सिंह गिल दे नाल प्रोग्राम शाम सवानी च आप जी दा स्वागत है।
2: तुहाडा वी स्वागत जी साडे पिंड ढेलमा दे विच।
1: धन्नवाद जी, अपनी फरमाइश वी दसो।
2: फरमाइश जी हैगा रणजीत बाबा दा सरदार गीत है जी।
1: अच्छा, एक गीत वधिया लगदा तुहानू?
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਗੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੀਤ ਨੇ।
1: ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ?
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾ ਸਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕਰਾਤੀ।
1: ਅੱਛਾ,
2: ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ।
1: ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ।
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
1: ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ।
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ?
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ।
2: ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਲੱਸੀ ਪੀਓ
1: ਜੀ,
2: ਸਿਕੰਜਵੀ ਪੀਓ ਜੀ।
1: ਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ, ਚੁਸਤ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ।

0: जी हाँ श्रोते, तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सचदेवा दे नाल। वेखदे हां केड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो, नमस्कार,
1: नमस्कार सर,
0: सत श्री अकाल, अपना नाम ते ग्रां दसो।
1: सर मैं अर्शदीप कौर बाजा खाना तो बोल रही हूँ जी।
0: अर्शदीप कौर जी, की हाल चाल ने?
1: हाँ जी सर, बहुत वधिया जी।
0: की करदे हो राजे?
1: सर बस हुण तां प्लस टू करके कहना मतलब बी ए दे भरे हुए आ।
0: अच्छा, बी ए फर्स्ट ईयर दे विच दाखला लेना तुसी, है ना?
1: हाँ जी।
0: केड़े केड़े विषय रखे ने?
1: नहीं सर, प्लस टू तो मेरी होगी जी।
0: हाँ, तो फिर हुण बी ए च तां विषय रखने पैणगे ना, तीन विषय।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: केड़े रखना चाहोगे?
1: सर मैं म्यूजिक ना करूंगी बी ए जी।
0: अच्छा, म्यूजिक वोकल के इंस्ट्रूमेंटल?
1: वोकल।
0: अच्छा, वधिया लगदा?
1: हाँ जी हाँ जी सर।
0: फिर जे म्यूजिक वोकल रखोगे फिर तां गुनगुना भी रहंदे होंगे तुसी।
1: हाँ जी सर।
0: फिर दो लाइना सुना सकते हो?
1: जरूरी सर, मैं मतलब के अमरिंदर गिल दा सुनानी है जी।
0: हाँ, स्वागत
1: मेरे नाना
0: है,
1: नानी को डेडिकेट करके।
0: स्वागत है, स्वागत।
1: मैं कुछ दिनों तो बहुत मिस कर रही थी
0: जी सुनाओ फिर।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
3: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
4: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
4: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
3: जी।
4: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
3: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
4: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
3: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
4: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
3: जी।
4: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
3: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
4: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
3: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
4: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?

0: का उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: क्या भूल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही, सुबह जल्दी।

0: अम्मा अम्मा,
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? अम्मा, क्या अम्मा, सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे, अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा, अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो... चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: तो गहना लूंगी मैं, तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी मैं, तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं, तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं।

0: सुंदर है ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं। अब चलो,
3: ये देखो ये पेड़।
0: देख लो।
2: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे।
0: चलो इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
1: क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
2: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है नहीं काटेंगे।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
1: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हेलो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया। अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
1: तू समझ गई ना?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल।
1: सुन,

0: हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं, क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल।
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5ों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य

0: थे अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: हुणे तुसी सुन रहे सी NCERT द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम उमंग। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। साडे स्टूडियो दी घड़ी मुताबक समा 8:29:27। सुनदे हां अगला प्रोग्राम, पंज पाणियां दे गीत।
10: पंच पाणियां दे गीत।
9: प्रोग्राम लैके पेशा मैं तुहाडा दोस्त मनदीप कोटली। जेकर तुसी अपनी पसंद का कोई पंजाबी गीत सुनना है तो जल्दी तो जल्दी डायल करो 0164-2240-331। लो जी, साडे नाल जुड़ चुके ने साडे पहले मेहमान। देखदे आ किस दी कॉल लगी है। हैलो हैलो, कौन साहब बोल रहे ने जी? सत श्री अकाल जी,
11: मैं बूटा सिंह बोल रहा, पिंड सुहलती तों जी।
9: अच्छा अच्छा, सत श्री अकाल बूटा सिंह जी। प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत विच तुहाडा स्वागत है। अपनी पसंद

0: कॉल। हेलो,
1: हेलो सर जी, सत श्रीकाल
0: सत
1: सर।
0: श्रीकाल भाई जी। सत श्रीकाल जी, कौन जनाब बोल रहे ने जी?
1: सकते
0: हेलो,
1: हाँ
0: पिंड केड़े तो बोल रहे हो भाई जी?
1: जी सर।
0: पुच्चो मंडी तो बोल रहे हो जी। की नाम है जी अपना?
1: जी
0: अच्छा जी, अपनी पसंद का गीत दसो जी।
1: कोई भी सॉन्ग चला दो।
0: ठीक है भाई जी, सुनो जी अपनी पसंद का गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में

के समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी

0: हफ्ते के अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना

0: कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, रदनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आडी बर्मन का बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे, खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसे

0: संगीतकार खय्याम, पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी, तो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जैसे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हमें गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

चूंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहां मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाजों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनकरेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो पड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच

फूलों से, तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स व्हाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं स्वदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे। तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुमा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

तेरी आंखों का जादू मैं चल लवा

जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं, तेरी निगाहों के ऐ सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ऐ सनम।

धधक रहा है सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन पहचाने।

ये रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें भूलना नहीं है, ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें जीने के सहारे इन्हें भूलना नहीं है।

0: भरी बातें, ये पहली मुलाकातें, ये प्यार भरी बातें,
1: मिल गए दुनिया में दिन के सहारे।
2: छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: ये आंखें उफ यम्मा, ये सूरत उफ।

0: तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।
1: तेरे दिल में जिस दिल

0: सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी। ए सनम तुझे रोके तो कैसे।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

के घर को चले धूमती आ रही सुबह।

तुमने दिए खुश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, खुश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और क्या ला रही है सुबह क्या।

0: खाई कसम
1: नई राह पर हमने रखे कदम, सका प्यार जब हम छुपाए तो क्या, सका प्यार जब हम छुपाए तो क्या, सब समझ पा रही है सुबह जान की, रात के हम सफर सबके घर जोड़ी।